0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी प्यारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
5: में खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ जब आए थे इस्लामाबाद माहदे के हतमी शक्ल दियारण में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम किरदार अदा कर नायब वजीर आजम इसहाक डार और घरू वजीर मोहसिन नकवी जो किरदार भी सारा जोगो रहो ईरान अमरीका माहदे से दुनिया में पाकिस्तान जो वकार बदो आए ईरानी सदर फोन कर पाकिस्तान कौम जहा थोरा मना मुखेस पाकिस्तान के दौरे की दावत दिनी कौमी वहादत लाए अस सब एक आयुक रही जंग बदी से खिते में मुआशी खुशहाली इंदी ईरानी सदर शहीद आयतुल्ला खामनाई जी आखिरी रस्मन में शिरकत की दावत दिनी है आखिरी रस्मन 3-4 जुलाई तीन पाकिस्तान वफद भी शरीक थी कौमी असेंबली ईरान अमरीका माहदे से कौमी क्यादत के भेटा पेश करो मंजूर कर वो वजीर आजम नायब वजीर आजम फील्ड मार्शल वफाकी घरू वजीर समेत बी क्यादत के भेटा पेश कई वही

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: कार में सवार सत जना मारजी विया, टे जख्मी। DPO बनू जो चवण आहे त मरका भेरा जे इलाके में धमाको सबब बिन कार सवार पंज जणा, कार में सवार ॿ जणा मारजी विया, लाश ऐं टे जख़्मी अस्पताल मुंतकिल कया विया। बारूदीमाबाद रोड जे किनारे ते नसब कयो वियो हो।
5: अल्हम्दुलिल्लाह, वो सियारात अब खत्म होने को है और तरक्की और खुशहाली का सूरज है। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे।
4: महंगाई सटियल आवाम के रिलीफ, पेट्रोल 74.28 रुपया एंड डीजल 70 रुपया। पेट्रोल डिवीजन 12 नोटिफिकेशन जारी करने बाद रात 12 बजे का नवा लाग जन लागू थी पाया। 74.28 रुपया की लाद का पेट्रोल जो फी लीटर 299.50 रुपया थी पो। डीजल 9 अघ 311 रुपया 47 पैसा मुकरर। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो वायदो कौम से हो अलहमदुल्ला वो पूरो कयो। तेल अघन में घटताई जो फायदो बिना देर आवाम के मुंतकिल किया है। पेट्रोल ते फी लीटर लेवी में 40.49 रुपया लाथ। डीजल ते फी लीटर लेवी में 19.71 रुपया इजाफो। पेट्रोलियम डिवीजन के जरिए मूजिब डीजल ते लेवी 53.26 रुपया में वधाए 72.97 रुपया कई वही। पेट्रोल ते फी लीटर लेवी 106.74 रुपया में घटाए चया है।

ईरान ऐं अमरीका विच में मफ़ामती यादाश्त सयूं पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त इस्लामाबाद मुआहिदे खे हतमी शकल ॾियारण में फील्ड मार्शल सदा उसम मुनीर अहम किरदार अदा।

0: बंदी सां खिते में मुआशी खुशहाली ईंदी। ईरानी सदर शहीद आयतुल्ला खमनाई जी आखिरी रस्म में शिरकत की दावत दिनी है। आखिरी रस्मों 3-4 जुलाई ते थन्दियूं। पाकिस्तानी वफद भी शरीक थन्दो। कौमी असेंबली ईरान अमरीका मुहिदे ते कौमी क्यादत के ठहराव मंजूर करे वरतो। वजीर आजम नायब वजीर आजम फील्ड मार्शल वफाकी घरू वजीर समेत बी क्यादत के भेटा पेश कई वही।
1: I'll tell you, I got to know some that I didn't know very well in Pakistan. You have the field marshal,
2: Munir,
1: who's great. Munir, he's great. And you have the prime minister, and they just get along great. I figured, well, maybe the military guy would be, he totally respects the prime minister. It's a beautiful thing to see. But they really helped us with this deal. They were, you know, they knew the Iranians, they knew the people. And
0: अमरीकी सदर ट्रंप एक भेरो बीहर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल सिरासम मुनीर की तारीफ। अमरीकी वेबसाइट के इंटरव्यू डींदे ट्रंप चवण आए तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल सिरासम मुनीर अजीम शफाहदे में वही मदद कई। फील्ड मार्शल सिरासम मुनीर पंजे वजीर आजम जो मुकम्मल एतराम करे तो जो बेहतरीन ए खूबसूरत अमल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए सऊदी वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान विच में फोन ते राबतो। सऊदी वली अहद वजीर आजम के ईरान अमरीका अमन मुहिदे ते मुबारकबाद पेश कई। वजीर आजम अमन की कोशिशन लाइ पाकिस्तान की हिमायत ते सऊदी वली अहद जा थौरा मञा। बिन्हीं अगवण ने इतफाक कयो त ईरान ए अमरीका के रहियल मामला भी गालन जरिए हल करण घुर्जन। वजीर आजम शहबाज शरीफ चवण हो तो सऊदी ए विच ओभर की रियासतन की हिमायत से गालियों कामयाब थी। इस्लामाबाद मुहिदे की सयूं वही कामयाबी है। उम्मीद है तो गालियों जो इंदर मरेलो भी कामयाब थन्द। सऊदी वली अहद तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से अमन मुहिदो थो। चंगबंदी मुहिदे बावजूद इसराइल थलन जो अंग वधी 47। लबनानी अख्तियार मूजिब इसराइली फौज नबकिया से बमबारी कई है जिन नतीजे में तबाह थी विया। हिजबुल्ला जवाबी हमलन में 4 इसराइली फौजी मारजी विया। इसराइली हमलन हिजबुल्ला के जवाबी कार्रवाई बाद बिन्हीं विच में जंगबंदी ते तफाक अमल

पर जब इसराइल ते तन पचा हुआ त मानो हुजे हाँ इसराइल खत्म थी चुको हुजे हा नेतन याहू सा बेहतर लगा पाइन पर खेस काबू रखणो पवंदो। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस चयो आहे त अमरीकी हथियार इसराइल खे बचाए रहिया आहिनि। इसराइली वज़ीर दुनिया में पंहिंजे अकेले ऐं ताक़त वारी तादी खे निशानो बणाए रहिया आहिनि। सदर ट्रम्प ते तनक़ीद कंदड़ इसराइली वज़ीर होश खां कम वठे, ज़मीनी हक़ीक़तनि जाइज़ो वठे। टंडो मस्जिद रुबीना उर्फ खालदा चांडियो खे बेगुनाह क़तल कयो वियो। कारे इल्ज़ाम हेठि बेदर्दी सां क़तल कयल खालदा चांडियो बाबति अहम रिपोर्ट साम्हूं अची वई। लम्स यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी मां जारी कयल रिपोर्ट मूजिबि रुबीना उर्फ खालदा चांडियो सां कंहिं बि क़िस्म जी ज़्यादती जा सबूत न मिलिया आहिनि। नारी बेडोही हुई ऐं खेसि रुगो शक जे बुनियाद ते क़तल कयो वियो। हू ॻोठ अबिटो चांडियो में ॿ महीना अॻु खालदा चांडियो खे कारे इल्ज़ाम मड़े बचो तेज़ाब गर्दी जो शिकार डॉक्टर महानूर खे इलाज लाइ अमरीका मोकिलण जो फैसलो। कुझु ॾींहं कोयटा जे सेडमिन अस्पताल में जवाबदार डॉक्टर महानूर नासिर तेज़ाब हारे छॾियो हो। पुलिस जी मुंबई मुक़ाबले शाहिद रिंद जो चवण आहे त डॉक्टर महानूर जो कराची निजी अस्पताल में रहंदो, जंहिं बाद खेसि इलाज लाइ परडे॒ मोकिलियो वेंदो। उन लाइ ज़रूरी कार्रवाई जी शुरूआत करे छॾी आहे। ऐं घड़ी खेरो में मिटी जो तूफ़ान, बिजली केतिरनि कलाकनि खां बंदि। तूफ़ान सबबि शहरनि जे सोलर प्लेट्स खे बि वॾो नुक़सानु।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

दोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hame Diamond Glow Bleach Cream।
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी करे खत्म।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फैट, एलोवेरा वाइटकाडो की भरपूर जिसके नए स्किन को फिटा मिटा वाइट बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
2: ओ पिता जा पिता पिता देवस
1: जो आवाज बुदंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
0: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN
5: अमरीकी सदर ट्रंप चवायत ईरान के मामले ते चीन अहम किरदार अदा कर चीन ईरान का पैं जरूरत जो 50% तेल खरीद कन्द है इसराइल से अमरीका जा बेहतरीन लागापा है। ईरानी पटरी वजीर अब्बास सराक्षी जेट स्विट्जरलैंड के दौरे का इम्कान अमरीकी खसूसी नुमाइंदो स्टीव विटकोफ स्विट्जरलैंड वेंदो। अमरीकी न्यूज वेबसाइट मूजिब स्टीव विटकोफ ईरान से एटमी मामलों से गालियों लाय स्विट्जरलैंड वही रो है। ईरानी वफद ब स्विट्जरलैंड पहुंचो। सिंध खुराक खाते में अरबे रूपये की करप्शन कदर पंजन आफिसर मुलाजमन की नौकरियों में निकाली। जिम्मेवार अरब 58 करोड़ 2 लाख का उगाण जो बहुकुम केस एंटी करप्शन हवाले। फूड इंस्पेक्टर कनकोट बलकशेर शेख फूड सुपरवाइजर गोलार्जी हबीबुल्ला अबड़ो फूड सुपरवाइजर पमर फूड सुपरवाइजर मजीद किरो दीदार हुसैन मंगसी फूड इंस्पेक्टर हाली रोड हैदराबाद मोहम्मद अली मंगसी की नौकरी में निकाली दी वही। खुराक खाते के सूबाई वजीर मखदूम महबूब जबान चवैद बरतरफ ऑफिसर जा केस एंटी करप्शन के मोकलिया व्या जिम्मेवार का पैसा उगाने लाइव अदालतों में सिविल को सोट दाखिल कया वा। सेवण में 4 ढीं घर ठाण लाइ बैंक में पैसा वठण बाद गुम थियल पीरसन जो लाश अस्तगोट नौवाण जो रवासी 58 साल मोहम्मद सदीक हाल पुटो जो लाश जहाज चौक त मिलो। केस दाखिल पीरसन के वारसन चुना जवाबदार पीरसन के पैसन के लालच में अगवा कर तशद बाद कतल कहवा है। पनवाकल में अगवा थियल सभा करोड़ो की बाजियाबी लाइ शहर की एहतजाजी रैली सियात समाज धुरन बेनजीर पार्क का ईद चौक की रैली कड़ी। पनवाकल में अगवा थियल सभा करोड़ो ए सालेपट में अगवा थियल नींगरी प्रिया कुमारी के बाजियाब कराने जो मुतालबो कयो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में किथे मिट्टी जो तूफान तो किथे वरी बरसात। बिजली बंद शिकारपुर में बरपासे में मिट्टी के तूफान बरसात पर बिजली बंद थी वही। मियां साहब अमीरपुर बुड़ो में भी तेज तूफान जो वसकारो तेज तूफान ने मुख्तलिफ इलाके में बिजली बंद थी वही। बलूचिस्तान के उस्ता मोहम्मद में भी कक्कर वसी पाया मौसम खुशगवार। पिथोरो में आबाद करण पारा पानी कोट खिलाफ एहतजाज पली माइनर में निकरंदड़ सैद की शाख की पुछड़ी के आबाद करण पानी कोट खिलाफ एहतजाज कयो। पानी फराहम करण जो मुतालबो मीरपुर भठोरो वेझो झोक शरीफ में आबाद करण जो पानी के कोट खिलाफ एहतजाज जरी पानी की खोट खत्म करण जो मुतालबो। सखर की अदालत पनवाकल में मुकाबलो जड़ाए मारियल जहांगीर जखरान जो केस दाखिल करण जो हुक्म दई छो। सखर की अदालत एसएचओ अब्दुल शकूर लाखों समेत 9 अहलकार खिलाफ एफआईए के केस दाखिल करण जो हुक्म दिनों। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सखर अला बचाओ कबूल एफआईआर दाखिल करण वाले केस की बुधनी कई। दरख्वास्त गुजार सफदर जखरानी मकसूल की न्याणी मुकदस ए वकील मुर्तज़ा कोराई अदालत में पेश थिया। अदालत चो तो एसएचओ अब्दुल शकूर लाखो एएसआई खालिक दिनों जतोई ए पुलिस अहलकारन खिलाफ केस दाखिल किया वे। पनवाकल पुलिस 16 अक्टूबर 2025 जहांगीर कोराई के मुकाबले में मारण की दावा कई हुई। आई खिप्रो में पीरसन पी के कतर कंदड़ बिन्नी पुटन खिलाफ केस दाखिल। मकतूल अहमद बोजदार जे नंढे भाउ खावन बख्श बोजदार खिप्रो थाने से केस दाखिल करायो। केस में जानाया वाय तो जवाबदार जहूर एनवर बोजदार नंढ सुतल पी के कुआरियों हणी कतल कयो। पीरसन के कतल जो केस दाखिल करने बावजूद पुलिस जवाबदार गिरफ्तार करण में नाकाम आए।
4: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GFM 91.6।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक
2: अपना शहर

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: विलायत,
1: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
4: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
6: असांजी कोशिश रंग लातो आहे, खिते मां जंग खत्म थी आहे। पाकिस्तान अमरीका ईरान के गालन जी मेज ते विहारियो, पाकिस्तान जंग रोकण में अहम किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ऐं आवाम के वाधायूं पेश कयां थो। क़ौमी असेंबली में बजट के सुणींदे दाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स निज़ाम में बुनियादी सुधारा कया आहिनि। नंढनि आबाद घरनि हारनि खे बिना व्याज कर्ज़ डि॒ना। आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियण जो तकड़ो रिलीफ आवाम खे डि॒नो आहे। सिंध असेंबली में बजट ते बहस जारी, अपोजिशन मेंबर जी बजट ते तनक़ीद। अरिड़हनि सालनि खां मौजूद मसला हल न थियण जूं दाहूं। एमक्यूएम एमपीए फहीम पटनी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते सूबे में अमल न थियण सबब मसला आहिनि। सूबो वफ़ाक़ खां पैसा वठी विरासत नथो करे। पीपी एमपीए नूर मोहम्मद बुरगड़ी चयो त चोर दरवाज़े खां नायूं आया, बोर्ड सबब मुंहिंजे तकते जा मुतासिर थियल स्कूल ठाहे ॾिना वञनि। आबादगारनि जो पाणी मसले पाणी लाइ परेशान आहिनि। पंजाब पारां रोकियल पाणी वठी खोड ख़तम कई वञे। केपी जे इलाके बनू में वेन ऐं कार रोड ते मवाद सां टकराइजी वियूं। ॿिनि अमदादी कारकुनन समेत 7 ॼणा मारिजी विया, 3 ज़ख़्मी। डीपीओ बनू चयो आहे त मरकाबेरा में रोड सां धमाके सां वेन में सवार 5 ऐं कार में सवार 2 ॼणा मारिजी विया। लाश ऐं 3 ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल। बारूदी मवाद रोड जे किनारे सां लॻायो वियो हो। सिंध खुराक खाते में अरबे रूपयनि जी करप्शन कंदड़ 5 आफ़ीसरनि मुलाज़मनि खे नौकरनि मां निकाली। ज़िमेवारनि खां 2.58 करोड़ खां वधीक उगाइण जो बि हुकम। केस एंटी करप्शन हवाले। फूड इंस्पेक्टर कंदकोट बलकशेर शेख, फूड सुपरवाइज़र गोलाटची हबीबुल्ला आपड़ो, फूड सुपरवाइज़र जोही अलियसगर पवर, फूड सुपरवाइज़र मजीद किरोदीदार हुसैन मक्सी, फूड इंस्पेक्टर हाली रोड हैदराबाद मोहम्मद अली मक्सी की नौकरी मां निकाली डि॒नी वई। खुराक खाते जे सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़मान चयो आहे त बरतरफ़ा आफ़ीसरनि जा केस एंटी करप्शन खे मोकिलिया विया आहिनि। ज़िमेवारनि खां पैसा उगाइण लाइ अदालतनि में सिविल सूट दाख़िल कया वेंदा। रोडकी वेझो ज़मीन जे मालिकीता बिंदरुनि में झेड़ो, 1 ॼणो क़तल। गोट नूर मोहम्मद शर में शर बरादरी जे बिंदरुनि में झेड़ो थियण सबबि गोलियूं लॻण सबबि राशिद शर मारिजी वियो। 1 ॼणे जे क़तल बाद दुरनि में छिकाण वधी वई। सेवण में 4 ॾींहं अॻु घर ठाहिण लाइ बैंक मां पैसा वठंदड़ गुम थियल पीरसन जो लाश हथ। गोठ नओ वाहण जो रवासी पीरसन मोहम्मद सदीक हाले पुट जो लाश जहाज़ चौक तां मिलियो। पीरसन जे वारसनि चवंदा त पीरसन खे पैसनि जी लालच में अॻवा बाद तशद्दुद क़तल कयो आहे। पनवाकिल मां अॻवा थियल सभा कलोड़ो जी बाज़ियाबी लाइ शहरनि जी एहतियाजी रैली। सियासी समाज दुरन बेनदी पार्क खां ईद चौक ते रैली कढी। पनवाकिल मां अॻवा थियल सभा कलोड़ो ऐं सालेपट मां अॻवा थियल निंगरी प्रिया कुमारी खे बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में किथे मिटीअ जो तूफ़ान त किथे बरसाति, बिजली बंदि। शिकारपुर ऐं बर्फ़ पासे मिटीअ जे तूफ़ान ऐं बरसाति सां बिजली बंदि थी वई। मियां साहब ऐं मीरपुर बुरड़ो में बि तेज़ तूफ़ान सां वसकारो। तेज़ तूफ़ान ऐं बाद में मुख़्तलिफ़ इलाक़नि जी बिजली बंदि थी वई। बलूचिस्तान जे उस्ता मोम में बि ककर वसी पिया। मौसम ख़ुशगवार। पिथोरो में आबादकरनि पारां पाणी कोड ख़िलाफ़ एहतजाज। पली मैडर मां निकिरंदड़ सहती शाख जी पुसली जे आबादकरनि पाणी कोड ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। पाणी फराहम करण जो मुतालबो। मीरपुर पठोरो वेझो छोक शरीफ़ में आबादकरनि जो पाणी जे कोड ख़िलाफ़ एहतजाज। ज़री पाणी जी कोड ख़तम करण जो मुतालबो। सखर जी अदालत पनवाकिल में मुक़ाबिलो ॼाणाए मारियल जहांगीर जखरण जो केस दाखिल करण जो हुकम ॾेई छॾियो। सखर जी अदालत SHO अब्दुल शकूर लाखू समेत 9 अहलकारनि ख़िलाफ़ FIA केस दाखिल करण जो हुकम ॾिनो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सकर अला बचाओ कबूल FIR दाखिल करण वारे केस जी ॿुधणी कई। चकराणी मक़सूद जी नियाणी मुक़दस ऐं वकील मुर्तज़ा कोराई अदालत में पेश थिया। अदालत चयो त SHO अब्दुल शकूर लाखो ASI ख़ालिक ॾिनो जतोई ऐं पुलिस अहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाखिल कयो वञे। पनवाकल पुलिस 16 अक्टूबर 2025 ते जहांगीर जखराणी खे मुक़ाबले में मारण जी दावा कई हुई। آئی کے پرو میں پیرسن پی کے قتل کندڑ بینی پٹن خلاف کیس داخل مقتول احمد فوجدار کے ننڈے بھاؤ کھاون بخش فوجدار کے پرو تھانے تے کیس داخل کرایا کیس میں جانا ویو جوابدار ظہور انور فوجدار نڈ ستل پی کے کواڑیوں ہانی قتل کیا پیرسن کے قتل جو کیس داخل کرنے باوجود پولیس جوابدار گرفتار کرنے میں ناکام
5: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
1: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
0: GAFM Network, سندھ کی آواز

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ace Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

जनाब आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। और इस प्रोग्राम में आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनके बारे में बताया जाता है और साथ साथ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने की बातें की जा रही है। तो बिल्कुल आप लोगों के साथ साथ मौजूद रहते हैं पूरे दो घंटों का आपका हमारा साथ होता है। साथ में आप भी हमें ज्वाइन करते हैं। तो बिल्कुल जी आप हमें कैसे ज्वाइन करने वाले हैं तो जरा उससे जाने बातें यानी कि आप लोगों को तरीकेकार बताते हैं कि आप किस तरह से हमें ज्वाइन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में जो मैं आप लोगों से सवाल पूछने वाली हूँ तो जरा वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोगों ने आज जो मुझे जवाब देना है यानी कि जो आज के प्रोग्राम का टॉपिक होने वाला है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं मुझे बताइए कि कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। यानी कि हमें भाई सारी हिस्ट्री तो पता है यानी कि बहुत से लोगों को पता है बहुत से लोगों को नहीं है पता, लेकिन आज आप मुझे ये बताइए कि कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। क्या ये आप बात जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे बताइए जल्दी से, अगर नहीं जानते तो भाई आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद होना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो GLRKANA FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज के ऊपर आइए और पेज के ऊपर आपको हमारे प्रोग्राम की पोस्ट मिल जाती है बिल्कुल लाइव, जिसे आप लाइक करते हैं कॉमेंट करते हैं और शेयर कर देते हैं। तो पोस्ट को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है जितने भी समाते हैं वो जनाब बताइए कि आप भी हमारे साथ साथ हैं और प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। ओके सो आप टॉपिक को फॉलो करेंगे। टॉपिक जो मैंने आज आप लोगों से पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि कर्बला का सबसे क्या आप जानते हैं। अगर जानते हैं तो मुझे जल्दी से बताइए और साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए क्योंकि आप लोगों के फीडबैक्स हमारे जो प्रोग्राम में आते हैं तो हमारे प्रोग्राम की रौनकें होते हैं बिल्कुल जी हमारे प्रोग्राम की जान होते हैं। तो आइए जी हमारे प्रोग्राम को जान दीजिए और इसके साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल

0: रखिए 88
1: सिंध की आवाज,
2: मोरू,
3: नौशहरों,
2: मीरपुर खास,
3: लाड़काना,
2: सक्खर
3: गूंज रही है हर जगह पर
2: सिंध की आवाज
3: जीए FM 88 नेटवर्क।
4: छा तवां भी पंहिंजो ख्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
5: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
4: सखर शिकारपुर रोड ते,
5: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
4: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
5: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
4: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
5: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा,
4: ऐं कारोबारी मौक़े लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज़ ऐं 600 गज़।
5: हिते तव्हांखे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं,
4: साफ़ मिठो पाणी,
5: बिजली, गैस,
4: 24 कलाक सिक्योरिटी,
5: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे,
4: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौक़ो बणाए थो।
5: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
4: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
5: कॉन्टेक्ट
4: 03009317252
5: एंड 03132757860। हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
4: तव्हांजे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन इंतिखाब।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन डॉट एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी अमाजी बारन जी बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जिलाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
6: GFM 91.6।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: टर्मेरिक न कर तू तो मेरा
1: ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए। स्किन आप सोप से क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज इन पाकिस्तान।

0: GFM 88 की आवाज,
1: GFM Twerk सिंध की आवाज।
2: एड्रेस लग हाई स्कूल नंबर 1 वीआईपी रोड मेहड़।
3: मुल्क में शुगर जो मर्ज तेजी से वधी रहयो आहे।
4: इन जा मुख्य कारण मौरूसी, मोटापो, वर्जिश न करण, गैर मयारी ग़िज़ा जो इस्तेमाल वगैरह आहिनि। शुगर जे मर्ज

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी फखर मोरो मिर्पा पर मातिर, आप सुन रहे हैं प्रवेश स्किन ब्यूटी शो। आप आ रहा है जनाब व्हाइट एज पे, अगर आप भी इसमें या फिर आप अपने कर तो अगर ये जो भी चीजें आप जान चुके हैं तो आप इस प्रोग्राम में जान जाएंगे। तो जब स्टोर्स पर अवेलेबल करेक्ट हो या फिर जी स्किन ब्यूटी, तो उसके लिए आपके पास जो नंबर आपको प्रोग्राम में बताया जाता है उसके ऊपर आप रब्ता करते हैं, या तो आप कॉल करते हैं या तो आप मैसेज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप भी परचेज करना चाहते हैं और काइंडली आपके एरिया के अंदर जो है ना वो अवेलेबल करा दिए। तो फिर जनाब आपके एरिया में अवेलेबल करा दिए जाएंगे और इसके साथ साथ आप डायल कर रहे हैं 03 1579 0595। इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, उन्हें बताइए कि आप अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ताकि अवेलेबल हो सके। इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए जनाब कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ती है बल्कि आपके चेहरे की खूबसूरती जो ना वो हमेशा के लिए लॉक हो जाती है। जानते हैं कि भाई गर्मियों का सीजन चल रहा है तो गर्मियों में ज्यादातर ऐसा होता है कि वो लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमने इस्तेमाल करें, ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें इस चीज की कंफ्यूजन ही जो है ना वो प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर कर देते हैं। तो अगर आप भी इस चीज को लेकर परेशान है कंफ्यूज होते रहते हैं तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं ताकि आप लोगों का जो माइंड सेट है ना वो जरा सेट हो जाए एक जगह पर कि आपने क्या चीज परचेज करनी है और जो चीज आपने परचेज करनी है वो क्यों परचेज करनी है। तो सबसे पहली बात, जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया ना इतने शानदार तरीके से तैयार किया गया है जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, मिल्क मौजूद है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप लोगों की स्किन को जो है ना वो फायदा ही फायदा पहुंचाती रहे। और इसी के साथ साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, क्लियर हो जाती है और आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिल जाती है उन तमाम तर चीजों से जो कि ये चीजें आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो नुकसान से जरा फ्री हो और वो चीजें जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए वो चीजें आपके चेहरे से हट जाएं तो आपने व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है जो कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे यानी कि नाइट क्रीम है जाहिर सी बात है। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई भी अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई अच्छा सा फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी फेस वॉश भी मौजूद है एंड व्हाइट एज ब्यूटी सोप भी मौजूद है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप अब सोप लगाएंगे या फिर फेस वॉश लगाएंगे। अगर सोप की बात करें तो वो एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है और फेस वॉश की बात करते हैं तो वो स्पेशली विटामिन सी से तैयार किया गया है। तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करते रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप एक्नी को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं और एक नहीं अगर आपकी जान नहीं छोड़ रहा, ज्यादातर ऐसा हो जाता है ना कि टीनएजर्स अगर आप लोग हमें सुन रहे हैं तो उनके चेहरे पर जो एक नहीं आ जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से जाते हैं। ज्यादातर तो आपने बहुत सारी ऐसी चीजें ट्राई करके देखी लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपने डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करके देखना है क्योंकि जब आप डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके चेहरे की एक्नी खत्म होते हैं बल्कि एक्नी मार्क्स हो या एक्नी किसी भी टाइप का एक्नी हो, ब्लैक पॉट्स हो, व्हाइट हेड्स हो, ब्लैक हेड्स हो और या फिर आपके चेहरे पर एक्स्ट्रा ऑयल ही क्यों ना हो, ये तमाम चीजें जो है ना वो कंट्रोल हो जाती हैं। और ये आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है, ये इतना जबरदस्त ट्यूब है जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाता है। अच्छा, गर्मियों के सीजन में अगर आप कोई अच्छा सा प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं जो कि आप लोगों के चेहरे को ठंडक का एहसास दे तो आपने डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल लाजमी करके देखना है और इसे आप अकेले भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। इसी के साथ साथ अगर व्हाइट एज लवली क्रीम का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए एक फेयरनेस फार्मूला तैयार किया गया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई फेयरनेस फार्मूला आप क्या चीज है, ये क्या बला है, तो आप लोगों को बताते चलें कि जब खास करके ऐसा होता है ना कि आप कोई नाइट क्रीम नहीं लगा पाते हैं, आपकी स्किन ऐसी है कि आपने कोई भी उसके ऊपर इस तरह का प्रोडक्ट नहीं लगाया है जो कि आपके चेहरे को खराब कर दे या फिर आप डरते हैं कि हम नहीं लगा पाते, हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसके लिए आपके लिए जो है ना वो फेयरनेस फार्मूले तैयार किए जाते हैं। उनसे आपको ये फायदा मिलता है कि आपकी स्किन फ्रेश भी रहती है, ग्लोइंग भी रहती है, हिफाजत भी होती रहती है। मार्केट में आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी फेयरनेस क्रीमें मिल जाती हैं लेकिन जब आप व्हाइट एज लवली क्रीम की जानेब आते हैं और व्हाइट एज लवली क्रीम इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में पहले जरा जान लें कि क्या ऐसी इसकी ये खास बातें हैं जो कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो व्हाइट एज लवली क्रीम सबसे पहली बार

रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन B3 है, वाइटामिन ई है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन डी है और इसी के साथ साथ सनस्क्रीन भी एड की गई है। यानी कि फेयरनेस क्रीमें तो भाई नॉर्मल सी फेयरनेस क्रीमें होती है, लेकिन व्हाइट एज वालों ने जो फेयरनेस क्रीम तैयार की है तो उन्होंने एक्स्ट्रा एक चीज भी एड कर दी इसके अंदर जो है ना, वो सनस्क्रीन एड कर दी है। इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को खूबसूरती तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि फेयरनेस फार्मूला है, जिसे आप किसी भी उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कीजिए, बूढ़ों के ऊपर, जवान लोग हैं, मर्द हजरात, खवातीन, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है और अपनी खूबसूरती की हिफाजत कर रहे हैं। अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो आप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली व्हाइट एज लवली क्रीम, जिसे आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं। बहुत एक जबरदस्त प्रोडक्ट तैयार किया है, तो जरूर आप ट्राई करके देखिएगा। जितने भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, चाहे आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं, डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब लगा रहे हैं, या फिर व्हाइट एज लवली क्रीम लगा रहे हैं, तो इन्हें लगाने से पहले अपना फेस वॉश आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, ताकि आप लोगों की खूबसूरती जो है वो आपको मिले और आप हमेशा के लिए अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी करते रहे। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि करबला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। यानी करबला का वाकया तो हर कोई जानता है, हर किसी को पता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि करबला का जो है ना वो सबसे बड़ा पैगाम क्या है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को काइंडली लाइक और शेयर कर दिया करें।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरतियां हासिल करते जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं। अच्छा बख्त अली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, बख्त अली सियाल भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और फहीम शेख कहते हैं याली मदद, मुलायम सलाम मदद, रेशम गली लाड़काना से शो सुन रहा हूँ। ओके जी ओके, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और फहीम कहते हैं कसीदो सुनाओ, जी जी कसीदा सुनाते हैं आपको, बहुत शुक्रिया। नजीर कोसों में सुन रहे हैं बलूचिस्तान से और कहते हैं अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो उसकी मखलूक के साथ ऐसा सलूक करें, बिल्कुल जी। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ सनाउला बिरोही, वालेकुम अस्सलाम, अदी छाल आए, खुश आयो, अदमा सफा ठीक था।

ओके जी, फहीम शेख क्या कहते हैं, ये तेरा काम है परवरदिगार, बादल के आगे जुरत इनकार ना होगा, वाज़े है कि वो साहिब किरदार ना होगा। सफ़ी में इश्क जिसने भी समझा हुसैन अलैहिस्सलाम से, जीने का कभी भी वो तलबगार ना होगा। क्या बात है जी, जबरदस्त। और किशोर भाई कहते हैं, सलाम अदा खुश आयो, बस हाजिरी कबूल करें। जी जी बिल्कुल, आपकी हाजिरी कबूल करी। और आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? दर्द दिल

लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ हजार खान जतोई भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है प्यारा भाता की आयो कहते कि जी हम भी आपके साथ आते हैं। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ साथ मौजूद हैं प्यारे भाई जान।

आपकी जी क्या बात है, और साथ साथ जो है ना आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों को ये बताते जा रहे हैं जनाब, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का या फिर आप इस्तेमाल करें डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, जो कि मैं आप लोगों को दूसरे घंटे में आऊंगी तो बताऊंगी कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का क्या ऐसा कमाल है जो कि आप लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आप वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो बिल्कुल जरूर कीजिए, और वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और डायल करते रहिए 03157990595। ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने एरिया में अवेलेबल कराइए, वहां से जाकर बस आसानी परचेज करते जाइए और इसी के साथ साथ इस्तेमाल करते रहिए वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आपके खूबसूरती की जमानत है। इसी के साथ साथ टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, प्रोग्राम में हमारे साथ साथ रहिए पूरी पूरी 3 बजे तक और सुनते रहिए वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरानी मीडिया मौजूद गुरु वजीर मोहसिन नकवी ईरानी क्यादत से मुलाकात कंदो। मोहसिन नकवी ईरानी क्यादत के अमरीका ईरान में तय थे मुआहदे के मुबारक दिन से गुड गालन के इंदर मरेले बाबत मुशावरत कंदो। ईरानी परे वजीर अब्बास इराकी के अज स्विट्जरलैंड के दौरे जा इम्कान। अमरीकी खसूसी नुमाइंदो स्टव विटकोफ स्विट्जरलैंड पहुंतल। अमरीकी न्यूज वेबसाइट मौजूद स्टव विटकोफ ईरान साइट में मामलों से गार्डन लाइफ स्विट्जरलैंड पहुंतो है। ईरानी वफद भी स्विट्जरलैंड पहुंचो। जंगबंदी के ऐलान बावजूद इसराइल जा लबनान से फिजाई हमला जारी। पंज शहरी शहीद केतरा जख्मी लबनानी अख्तियार मूजिब इसराइली जंगी जहाजन ड्रोन्स नबतिया के इलाकन में आबादियों के निशानो बनाया। इसराइली फौज पारा इमारतों से बमबारी का सिलसिलो वक्त वक्त से जारी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार मिस्र रवानो। चैन मुल्की परडेही वजीर के इजलास में शिरकत कंदो। कायरा में थन्दड़ चैन मुल्की इजलास में सऊदी अरब तुर्किया मिस्र जा परडेही वजीर शिरकत कंदा। इजलास में खिते सूरत हाल ईरान अमरीका मामलों की अगबराई जायजो वरतो वेंदो। असांजी कोशिशन रंग लातो है खिते में जंग खत्म थी है। पाकिस्तान अमरीका ईरान के गालन के मेज से विहार। पाकिस्तान जंग रोकण में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम फील्ड मार्शल आस अवाम के वादायू पेश कया तो। कौमी असेंबली में बजट के सेट दीदे नाणे वे वजीर मोहम्मद औरंगजेब चवा टैक्स निजाम में बुनियादी सुधारा कया। नंडन आबाद करण हारन के बिना ब्याज कर्ज डिना। आलमी मार्केट में तेल सस्तो थो तकड़ो रिलीफ आवाम के डो।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM
1: 91.6। जल्दी से इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए और उन्हें बताइए कि आपके एरिया में नहीं मिल रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। और इसी के साथ साथ मैंने पहले आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। सो फिलहाल अभी जो है ना आप लोगों को मैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने हमें अभी अभी सुनना स्टार्ट किया है तो उनको वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही साथ आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है तो जरा वो भी रिपीट करवा। आज के प्रोग्राम में जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बताएं कि करबला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। करबला का वाकया तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि करबला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है? आप लोगों तक वो पैगाम पहुंचा है या नहीं पहुंचा, आप मुझे ये बताइए जल्दी से। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं और शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमें ज्वाइन कीजिए 888 और फेसबुक पर। ओके जी, आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम आप लोगों के साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जाना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कि आप लोगों को पता आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आप क्यों। तो अक्सर मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो आपको पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में कि आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार की गई है जिसके अंदर विटामिन बीट्स मौजूद है एंड माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयार की गई है और ऑल स्किन टाइप के लिए। स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप लोगों को पता है स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, सिर्फ दो दिनों में वाज़ह नताइज के लिए भी स्किन वाइटनिंग क्रीम का आप जो ना इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जदीद अज़ा जैसे अल्फा आर्बोटीन कोजिक एसिड से भरपूर रात भर ये क्रीम आपके असर करती है कि भाई वाकई गए और मजेदार आए। इन खान अलावा तुम्हारी जुदार थी वेंदी का डलनेस तव्हांजी चेहरे जी जेका स्किन अगर तव्हां बि थी त तव्हांखे ख़बर आहे हिन जे अंदरि आहिनि जेके तव्हांजी स्किन चाहींदी तव्हांखे ऐं तव्हांखे इहा ख़बर हुजे त जॾहिं ॿिनि रातिनि जे इस्तेमाल रिज़ल्ट मिले थो। ब्यूटी क्रीम जेका हर हिकु मर्द हज़रात आयो इस्तेमाल करे सघे थो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे राति के टाइम सबसे पहले लॻाईगा, लेकिन सोने से पहले फेस वॉश की बारी। स्किन फेस वॉश आप लोगों के लिए अभी जब आप डी होना चाहिए वॉश जो है जो की हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया। जब आप डी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन जो है वो

क्लीन रहती है और साथ साथ आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है और आपके चेहरे की स्किन ग्लो की तरफ आती जाती है। आप लोगों की स्किन अगर मुरझा सी गई है, आपके चेहरे की स्किन मर रही है, तो उसे जिंदा रखने के लिए आपने जो है ना वो डी स्किन फेस वॉश का यूज करना है एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है। कई मरतबा ये चीज हो जाती है कि हम जैसे ही अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पर आप लोगों की स्किन को ज्यादा जरूरत होती है प्रोडक्ट की, ऐसा होता है बहुत से लोगों को ना मैंने देखा है जो कि भाई कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा आपकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जब आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि आपके चेहरे पर जो ब्लैक हेड्स हैं वो बढ़ जाते हैं या फिर आपके चेहरे पर आंखों के हल्के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या फिर आपके चेहरे की स्किन जो है वो झुर्रियों की जानिब चली जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना वो काफी काले काले निशान पड़ जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है ना वो एक अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, एक अच्छा सा क्रीम होना चाहिए। उसके लिए आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करना है जो कि दोनों चीजें आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली हैं। तो लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा और साथ साथ अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहे तो डायल कीजिए 03 1579 0595।

आप ही मैं बहुत बिजी थी इस वजह से मैं नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं शोनी, अब आप आ चुकी हैं तो आपको खुशामदीद कहा जाता है। और ये सजाद अली जमाली हमारे साथ ही नवाबशाह से कहते हैं आपको भी खुशामदीद भाई जान। इरम कहते हैं सिजानी जी इंशाल्लाह, मैंने उम्मीद तो करी है, अल्लाह पाक नसीब करेंगे।

लोगों के लिए दर्द दिल कहती है कि टॉपिक चंदा वाकिया करबला हमें सबर वफीने इस्लबानी का दर्ज देती। और गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ कहते हैं सलाम जबरदस्त प्रोग्राम थर्ड पार्कर से वफा। गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं भाई को। और वफा वहीद हमारे साथ ही, वालेकुम असलम सिदरा जी, आप कैसी हैं? माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम। राम जेकब आबाद आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। फहीम आपका कसीदा लगाते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। वरियाम कहते हैं कि सिदरा इस प्यारे शो में हमारा दिल से सलाम हो आपको, आपको भी वेलकम एंड वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। और गुल मोहम्मद रिंद भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक हैं? अच्छा चाचा खालिद कहते हैं कि हिस्से में इज बेटर डी स्किन या वाइट एज, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा और साथ में डी स्किन फेस वॉश भी आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है चाचा।

अच्छा नाना चाचा तुम टेंशन के तुम उम्र ना पूछो उम्र पूछण वैसे मुझे कम भी ना हों एमा वो मानू है जो पांजे कम से कम रख है। अच्छा गुल मोहम्मद रिंदबाज से गड मौजूद आयन कहते हैं ये दुनिया तुम्हें क्या देगी मोहसिन जिसने इमाम हुसैन अलैहि सलाम को पानी तक ना दिया। हाँ भाई सही गाल है। किशोर भाई कहते हैं कि अदि शुक्र करण ते अवहां जो समझायो इलाही सुठो लगो मुखे मुझी गाल ते अवहां जो समझायण वणंदो आ इलाही जो पंजो पान फील थिंदो आ पा हां ये हकीकत है वैसे अगर डिठो वने ना तो इलाही चीजों होंदियो आन जके मुखे तमा सा शेयर करनी होंदियो आन पर कदें वक्त ना मिलंदो वरी कदें एड़ो मौको ना आंदो जो उनन पहुंचायो वने तो अगर कुछ गालू तमा करी वठन दिल चोंदे या तमा सा कुछ गालियों करी वठो ए वे गालियों कुछ शायद तमा जे बेहतरी लाए हो जन आई वरी जदी तमा जड़ा प्यारा मानो से सगड़ माजू हुंदा है जके समझे उन्हें खबर होंगी असो क्यों पया या जो कुछ थे पो सब पॉजिटिव तरीके से वा तो अधिक सुठो लगन है। अच्छा सो तुम भी पोस्ट के लाइक एंड शेयर कर जिन मान अं को फॉलो किया गुल मोहम्मद रिंद भा चले मैं कोशिश करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ और साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम जो है ना वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाते हैं उसके बाद हम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा हम आपके साथ मौजूद रहेंगे पूरी पूरी राइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आओगे जी, वापस आ चुकी हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम। साथ मौजूद यहाँ पर मटियारी सकरन मेहरापुर मबलाड़काना व्हाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करते जा रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं क्योंकि आपकी स्किन को जरूरत है जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो। अक्सर जब आपको निखारने की जरा तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी करते साथ ही ये चीज आप अपने जहन में रखा अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो आप लोग ये चीज समझ लें कि आपने जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है, तो वो प्रोडक्ट सबसे पहली बात आपकी स्किन के मुताबिक तैयार किया हो और सबसे अच्छी बात कि वो जो है ना ऑल स्किन टाइप के हिसाब से हो। ऐसा होता है कि जब आप मार्केट जाते हैं आप लोगों को समझ नहीं आती बात और आप लोग जो ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में कि हमने किस करना है, कौन सा लेना है, ये वाला सही रहेगा या वो वाला सही रहेगा। तो इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में जो है ना आप इन चीजों को जरा साइड पर रख देते कि भाई और बहुत सारे काम है हमें, तो इन चीजों को जरा साइड पर रखिए। तो मैं आप लोगों की जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो उसके इस्तेमाल से पहले कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत आप लोगों की मदद हो जाती है और तक पहुंचाने आप वाइट और हर तरह स्किन ब्यूटी के लिए जो है ना वो जो कि आने के लिए है। तो डी इस्तेमाल कीजिए और साथ में डी स्किन फेस वॉश आपके लिए मौजूद है जो कि आप बिल्कुल लगाएंगे और डी स्किन का फेस वॉश आप अप्लाई कर सकते हैं 2 से 3 मरतबा आपने स्किन के ऊपर दिन में और रात में। और उसके अलावा अगर आप क्रीम तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और चाहते हैं तो इसमें आप लोगों के लिए नाइट क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, एक्नी ट्यूब है, सोप है, फेस वॉश है। तो इतने सारे पीजिए और परचेज कीजिए और फिर इस्तेमाल कीजिए। कोई सेंसिटिव जो है ना स्किन वाले प्रोडक्ट जो है वो नहीं, ऐसा नहीं कि भाई अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल जी कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के लिए मॉइस्चर है जनाब आप लाजमी लगा स्टार्टिंग से लेकर हमारे सो है ना

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें और इसी के साथ साथ सलूक मदीद कहा जाता है जी। सो आप लोग क्या लोग हैं वो सुनना और जानना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जी पैनल पर अच्छा इरम हमारे साथ और शेर अली फरहान हमारे साथ हैं, अली जमाली मिलती हूँ और रियाजी मुस्कान है और वाइट टॉपिक सदवा दुनिया के ईद के आगे नहीं कलाम शहीद है हम अपनी प्यारी इस कसीदा है। तो जरा उसको हमारे साथ हैं जी, हमें और हमारी सदों की जरूरत है। बिल्कुल जी, मेरा चल रहा है दिल कि भाई जो कि बिल्कुल लाइट सी तबियत लोगों को लगता है करती हूँ तो मैं इस तरह का शो नहीं कर पाऊंगी कि वो लाइट सा हो, संजीदा से लोग हो संजीदा, लेकिन ये मेरा दिल कर रहा है कि ऐसा एक शो मैं करूं और मैं शायद करूंगी। तो फिलहाल तो जो चल रहा है उसके ऊपर आप गुजारा कर लीजिए और बहुत शुक्रिया साइमा आप हमारे साथ हैं। अच्छा इरम क्या बात है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, आप ख्याल रखिएगा अपना और मेरे लिए दुआ जरूर।

साथी लाड़े खून से चरागे दीन ने इस्लाम जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने, खुद को तो एक बूंद भी पानी ना मिल सके मगर करबला को खून पिलाया हुसैन ने, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहां में सजदा किया तो सरना उठाया हुसैन ने, सबरे हुसैन को मेरा सलाम। इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। ओके जी सोनी, ठीक है ठीक है। अच्छा सरदार हमारे साथ मौजूद है, जान कहते हैं दुनिया जी ना ही परवाह, सिस्टर तवा के खेर हुए हा तवा जो मोहब्बतू आए। अच्छा गुल मोहम्मद रिंद भाई, इमाम हुसैन अलैहि सबर वफादारी का दर्ज दिया है और उसने हमेशा ये बताया है कि जालिम के सामने अपना सर मत झुकाना, सर हमेशा खुदा का, करबला में हमेशा वफादारी का दर्ज दिया है और सबर का भी। चलें जी बहुत बढ़िया। और ये हजार के साथ कहते हैं करबला का सबसे बड़ा पैगाम, फर्क कुर्बानी सबर और जुल्म के खिलाफ खड़े होना, ये हमें सिखाता है कि सच्चाई और इंसाफ के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी आए। तो हम नाम के इसके ऊपर ना मेरी भी यही सोच है कि हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं, हमारा वो जो यानी हमें जिस तरह अपना जिंदगी अपनानी चाहिए, जिस तरह हमें कि हम रहना ये चीनिया जाती है कि नहीं है, और हम थोड़ा तमाम चीजें ऐड करने का हमें हुक्म दिया गया है, तो बस थोड़ा थोड़ा करके आप जरा अपनी जिंदगी को जो है ना वो आसान बनाने की कोशिश करें, हल करने वाले हैं। और चाचा खालिद कहते हैं कि और भी दुख हैं सभी बहुत, और वो अदा जी थोड़ा सा ही, बहुत शुक्रिया चाचा खालिद। वो तो ईद शो में आप दोनों ने मजाक किया था, इट्स ओके दिलवाला हूँ, सो चलें कोई बात नहीं, वैसे तो वो की बहुत अच्छी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लेगा, वैसे कल तारीख थी और कल जो होगा मेरा मतलब ऐसा समझ लें कि लास्ट डे होगा, उसके बाद जो है ना वो हम 11 या 12 तारीख के ऊपर

अच्छा गुल मोहम्मद भाई जान बना चाहिए, आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। और साथ साथ वासु भाई भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं। वासु भाई आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं अदी कसीदो। अच्छा अच्छा चलें बिस्मिल्लाह आप खाइए। और दर्द दिल कहती है कि सच में सिदरा तुम बातें बस ठीक है, मेरी इतनी तारीफ मत किया करे। और ये किशोर भाई कहते हैं कि हम मुहर्रम में प्रोग्राम करते हैं, मैं इस पर भी हैरान हूँ। बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे ना किसी भी टाइप का शो दे दे, मैं करके दिखा दूंगी।

0: अच्छा आज की मतलब प्रोग्राम में जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर दें, क्योंकि मुझे जो है ना वो आज के प्रोग्राम में लाइक्स थोड़े कम नजर आ रहे हैं। तो मुझे जो है ना मतलब एक होता है ना कि ऑब्सेशन होती है कि भाई एक इंसान की, तो मुझे ये लगता है कि मेरे प्रोग्राम में लाइक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा दिखने चाहिए। तो लाइक्स जो है ना वो कर दें जिन लोगों ने नहीं किया। और साथ साथ जो है मैं आज जिन लोगों की जरा फरमाइशें स्किप करूंगी तो उसके लिए माजरत कर देते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी जो है ना मुलाकात कल वाले प्रोग्राम में तो होगी, तो जिनकी फरमाइशें रह जा रही है तो वो कल आकर मैं लगा लूंगी। और साथ साथ आपको ये जरूर मैं कहती हूँ जनाब कि आप इस्तेमाल किया करें जो भी प्रोडक्ट आपको मैं बताती हूँ, और वो जो प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ वो आपकी स्किन के मुताबिक होते हैं। उनके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता कि भाई आप लगाएं तो आप लोगों को नुकसान पहुंचेगा। मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो जो भी मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट लेकर आती हूँ तो वो आप लोगों की स्किन के मुताबिक होते हैं, आप लोगों को जो ना अच्छे वाले रिजल्ट देने के लिए होते हैं। तो जब भी आप इस्तेमाल करें वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो इनके जितने भी यानी कि ऐसी चीजें हैं जो इनके अंदर एड की गई है, तो वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात, जैसे कि भाई मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट मौजूद है। यानी कि अगर आप नाइट क्रीम नहीं लगा पाते हैं तो आप फेयरनेस क्रीम लगाएंगे, एक्नी प्रॉब्लम आपको आ चुकी है तो आप डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए सोप मौजूद है, आपके लिए फेस वॉश मौजूद है, हर तरह का प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आप जो भी अपने स्किन के ऊपर सूट करने वाला प्रोडक्ट यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं उसे आप लगाइए, और जो है ना फिर मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। और उसके अलावा
1: ये फूल कलियां ये चांद तारे,
0: ये जी हमारे प्रोग्राम का लास्ट कसीदा हमने लिस्ट में लगा लिया है, इसके साथ आप लोगों से हम इजाजत भी लेंगे। जाते जाते आपको कहकर जाऊंगी कि आप जरूर डायल कीजिएगा 03-15-799-0595, ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकें, और उसके बाद आप जो है ना इजीली जाकर परचेज कर सकें। तो आप नंबर जरूर डायल कीजिएगा। इसी के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से जो है ना मुलाकात मेरी कल वाले प्रोग्राम में होने वाली है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कहीं पर कोई गलती हो गई तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, जिनके फीडबैक रह चुके हैं, जिनकी फरमाइश रह चुकी है, सभी से माजरत करते हैं। ऐं किथे मुंह को अड़ो लफ्ज़ गाले जो जेको तवां के सुठो न लगे उन जे लाइ भी माजरत कयूं था। सो मुकलानी नाहे बाबू सिन सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: शाहल अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
4: अब आप सुनेंगे
5: कायरा में थींदड़ चार मुल्की इजलास में सऊदी अरब तुर्किया मिस्र जा परडेही वजीर शिरकत कंदा इजलास में खिते सूरत हाल ईरान अमरीका मामलन ते अगभराई जो जायजो वरितो वेंदो चार सौ सत खरब इकतालीह अरब पंजवंजाह किरोड़ खां वधीक जा लाज़मी खर्चन जा तफ़सील क़ौमी असेंबली में पेश मुल्की कर्ज़न ते व्याज ॾियण लाइ उणहतर खरब ॿियासी अरब खां वधीक रक़म रखी वई रिपोर्ट मूजिब
6: नई 3-1 रिवाइव प्यास बुझाने की सुपर पावर
5: लाइ उणहतर खरब ॿियासी अरब खां वधीक रक़म रखी वई जे लाइ अठवंजाह खरब खां वधीक

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: करें तू तो मेरा फैन।
1: वाइट डे ब्यूटी प्लान के साथ केमिकल्स स्किन में हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बन को दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट खास ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का डायोकॉन इंटर।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतों का पैगाम यहाँ वहाँ। M88 सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो ये FM 88 नेटवर्क ते।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खिते नेटवर्क, सिंध की आवाज़।